0: खुदा की बरकत तुम्हें सदा हासिल हो, उसकी मोहब्बत में कायम मसरूर रहो, आबाद रहे घर तेरा और तरक्की करे तेरी औलादे, भरा रहे हमेशा मखजन तेरा और सर सदा ऊंचा रहे, नाकाम हो सारे दुश्मन तेरे और बर्बाद उनकी साजिशें, हर मुकाम पर खुदा तेरे साथ रहे और उसके नूर में तू मुकम्मल हो जाए, खुदा की नजर तेरी ओर सदा रहे और वो तुझ पर मेहरबान हो, उसकी हिफाजत में तू महफूज रहे, चाहे जहां कहीं तेरा ठिकाना हो।
1: तपाईको छिमेकी मेरो छिमेकी, यो हो रेडियो छिमेकी। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो छिमेकी 107.2 मेगाहर्ज।

अरे मेरो भाइ, के लगाइरहेछौ? रेडियो छिमेकी लगाऊ, रेडियो छिमेकी 107.2 मेगाहर्जमा। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो छिमेकी 107.2 मेगा।